0: लौन सक्यो बुहार ए कोही छ भने लौन लौन सक्यो
1: पानीले पानीले पानी यताले पानी
0: लौन लौन सक्यो उठ यता त्यता
2: यता
0: लौन सक्यो।

0: नया नेपाल को नया आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज
1: Je m'en souviens, il a souillé son âme, toi tu t'es battu.

0: भीमेश्वर मंदिर में दर्शन करना आउनुहुने भक्त सन हरुमा हार्दिक अनुरोध
1: मेरो
2: विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध

मनोरंजन साहित्य और कला। संस्कृति पर्यटन और विकास का लागू जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।